0: बताई भैया हमरा हाल का है।
1: बता दे।
0: निकले थे हम हलवा खाने, मुंह ही जल गया है।

हमने जाग जाग की ऐसी भागम भार कि हम कभी आ गए कभी हुआ गए कभी ही आ गए कभी हुआ गए कभी इधर भगे कभी इधर भगे फिर तुमने दिया ये पान तो आई हमरी जान में जान तो आई हमरी जान।

0: राणा जी खबर पक्को है, वो दुर्गा आज रात अपने यार के साथ मेले में जाने वाली है।
1: आज की रात उस लौंडे की आखिरी रात होगी। राणा से दुश्मनी लेने का मतलब है ये बंदूक और उसका सर

0: क्या हुआ माया?
1: डर लग रहा है, तुम्हें कुछ हो गया तो?
0: मुझे? सिली गर्ल, मुझे क्या होगा? दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती।

0: ऐ मेरी हमरंग मुझको थाम ले, जिंदगी से भाग कर आया हूं।
1: बारिश हो रही है, ये बारिश ना होती तो भी ना आती।

0: Up, mate.
1: Thanks.
2: अरे थैंक्स कायका, आई लव टू ड्राइव.
1: ओ नहीं, उसके लिए नहीं. आज तुमने किया. पर्सनली मुझे फाइट बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन आई फेल्ट हैप्पी.

0: की, प्लीज कुछ करो यार।
1: सपने में आयो क्या?
0: हाँ।
1: तो फिर कपड़े क्यों पहने?
0: Very funny. इसी तरह उठते हैं पानी पीते हैं। Living in a dream world.
1: अच्छा बाबा मुझे माफ कर सकती है?
0: Now you're talking.
1: एक मामला तो अपनी गलती से डालने का। मैं तुम्हें कॉफी पिलाना चाहता हूँ।
0: Again.
1: अच्छा पहले फिल्म पर कॉफी।
0: Vicky, तुम अपने आप को जितना स्मार्ट समझते हो उतने हो नहीं। अच्छा वहाँ ना किसी को बाहर ले जाए। इतना पुराना है। Better luck.

0: तुम तो जानती हो ना मेरे पास अखबार में मेरी एक्स गर्लफ्रेंड दोस्तों, हाँ देखा सब कुछ बोल दिया मैंने इसको, कुछ छुपाया नहीं है। Come on, man, I really love her.
1: Kiki, I love you. You're the best guy in my life. मुझे नहीं पसंद है कि तुम किसी और के साथ।
0: यार तुम हद से ज़्यादा पसंद से बोल।
1: तुम्हारा पता नहीं, मैं पसंद हूँ। पर तुम्हें मैं किसी के साथ
0: किसी से बात नहीं कर सकते ना?
1: तो हाँ बात से कुछ ज़्यादा